सुत बंता कोहे न किसकी तरिया सिर सिर संबाहे ठाकुर काहे मन पौ करिया उड़े उड़ावे स कोसा ते पासे मरे सरिया तिन कौन खिलावे कौन जगावे मन मैं सिमरन करिया समन दान दा ससदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइया तेरा अंत ना पारावरिया राग आसा महला चौथा सौ पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सौ पुरख निरजना पुनिण गमा गम पारा सब त्यावें सब त्यावें तो जी हर सचे सिजनहारा साब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा हर दया वो संतो जी सब दूब सार नहारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू गड़ गड़े अंतर सरम निरंतर जी हरे को पुरुष माणा एक दाते एक भिखारी जी सब तेरे चोज वरदाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन और ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेन जी तेरे क्या गुणिया बखाना जो सेवै जो सेवै तो जी जन नानक तिन करबाणा हर दया वेर त्यावे तो जी से जन जो मैं सोवासी से मूत भय जिन हर त्याया जी तिन तोटी जम की फासी जिन निर्भाओ जिन हर निर्भाओ त्याया जी तिन का पाओ सगवासी जिन सेवया जिन सेवया मेरा हर जी ते हर रूस मासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भग तेरे पसलां तो जी अनक अनेक अनंता तेरे अनेक तिन करे हर पूजा जी तब तापे जावे बेअंता तेरे अनेक पड़े बहु सिम साह जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत प्रज नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुर परंपर करता जी तू जे वड़वर न कोई तू जो जो एको सदा तू एको जी तू नेचर करता सोई तुरे आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करें सोई तुरे आपे सिसा बो पाई जी तुरे आपे सिसा गोई जाना ने गुण गावे करते कह जी जो सबसे का जानो या समला चौथा तू करता सचार मैडा साई जो तू पावे सोई तीसी जो तू दे सोई ओ पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिनो कृपा करे तेना अमृतन पाया गुरमहला दा मन मोहगवाया तुरिया विछोड़िया आप मलाया तू दरियाओ सब तुझी माए तुझ बिन दूजा कोई नाए जे जन सब तेरा खेल वजोग मिल विछड़िया सजोगी मेल जिहनों तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सादी आव खाने जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद में दूजा अवर न कोए तू कर कर वेखे जाने सोए जन नान गुरम परटोए आसा महला पहला तेत सरवले भैले नवासा पानी पाव तिने किया पंग जमो पग नहीं चाले हम देखा तैं डूबिया ले मान एक ना चेस मूड मंदा हर विसर तेरे गुण गलिया रहाओ
नाहू जती सती नहीं पड़या मूरख मुगदा जन्म भया प्रणवत नानक तिन की सरना जिन तो नाही विसरया। आसा महला पंजवा पई प्राप्त मनुख दे हुरिया गोबिंद मिलन किए तेरी बरिया अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज के वंदा सरंजाम लाप जल तरन कै जन्म बिरथा जात रंग माया के रहाओ जाप तप संयम तर्म ना कमाया

शरण परे की राखो शर्मा। पातशाही दसवीं कवि आवाज बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दह रक्षा, पूर्ण होए चेत की इच्छा, ताव चरण मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दोसव तुम काबो, आप हाथ दे मोए बचावो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक से सब करतारा, मोर अच्छा निज कर द करिय, सब रिन को आसंगरिय, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊं, जो बर जाऊं तुम ते पाऊं, सेवक से कह मारे तारी है, चौन जो सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे अबरी है, मरण काल का त्रास नवरी है, हो जो सदा हमारे पच्छा, सिरिया तुझो करी हो रच्छा, राह लियो मोए राखण हारे, साहेब संत सहाय प्यारे, दीन बंधु संके हमता, तुम हो पुरी चतुर्दास कंता, काल भाए ब्रह्म अवतरा, काल भाए शिवजु अवतरा, काल भाए कर में बरगासा, सगल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी सेवकियो, वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताए हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दै जशन अपजायो, आदि अंत के अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सर पर जाजन आप सवारी, सेवकान को सेव गुण सुख दियो, सतरन को पल मोहबद कियो, गड़गड़ के अंतर की जानत, परे बुरे की पीर पछानत, चीती ते कुंचर अस्तूला, सापर कृपा दृष्ट कर भूला, संतन दोह पाए ते दुखी, सो पाए साधन के सुखी, एक एक ही पीर पछांद, कड़ कड़ के पढ़ पढ़ की जांद, जाबुद कर करां कर तारा, पर जा तर तव दे अपारा, जाबा कर कर तो हो कब हूं, तुम मिलत दे तर सब हूं, जेते बदन से सावतारे, आपे अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रहत निरालम, जान बे भेद रयालम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद नील अनाद संभ, ताका मोड़ जात पेदा, जाको भेव न पावत बेदा, ताको गर्भान मानत, महा मोड़ का भे न जात, महादेव को कह सदाशिव, निरंकार का चिन्हित न भे, आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पेन पेन तो है तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, के बैसा प्रथम संसारा, एक रूपानूप स्वरूपा, रंग बेहोरा कहीं भूपा, अंड जर से तजकीने, उदय खान बहोर रच दीनी, कहूं बुरा जाहूं बैठा, कहूं सिंह प्यो शंकर कैठा, सगरी से दिखाए अचंभव, आद जगासरु से अंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख अबार सिख संगरो, दो जत उठो तो पाता, सकल मलेश करो रणगाता, जया तो सब सरणी परे, तिनके दुष्ट दो तो है मरे, पुरख जमन पग परे ते हारे,
तिनकै तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट नहीं आए हैं। रचा होए ताए सब काला, दो टरे टरे तद काला। कृपा दर तन जाए नहर हो, ताके ताप तनग में हर हो। हृद सिद कर्म सब होई, दो सह सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल भांते ताए उबारा। जिन नर नाम त्यारो कहा, दारिद दुष्ट दोग ते रहा। खड़ग के तमै शरण तिहारी, आप आदे लो अबारी। सर्व ठोर मोहो सहाई, दुष्ट दोते लो बचाई। सवैया पाएंगे जब ते तुमरे, तब ते को तरे नी आने। राम रहीम पुराण कुरान ने कहे, मत एक न माने। सिमरत शास्त्र बेसब, बहु भेद गेघ न जाने। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तोय बखाने। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के

जन्म है मरे जिसके अंदर बसे निरंकार तिसकी सीख तरह संसार जो तुम पाने तिन प्रभु जाता नानक उन जन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना की आया पे माने आपे आप आप करत नबेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा उपाप सन सगल ते रहत सब कह जाने आत्म की रहत जिस पावे से लय लड़ लाए तान थनंतर या समाए सो सेव जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरी श्लोक काम क्रोध यार लोभ मोह बिन से जाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अश्वरी जे प्रसाद शक्ति अमृत खाए तिस ठाकर को रख मान माहे जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिस को सिमर परम गत पावे जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे तय सदा मन अंदर जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ते आइए त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसे त्याग कद अवर लुभावै जे प्रसाद सुख से सुई जय मन आठ पैर ताका जस गवि जय जे प्रसाद तू सबको मान मुक्ता को दर्शन बखान जे प्रसाद तेरा रहता धर्म मन सदा त्याग केवल पार ब्रह्म प्रभु जी जब दरगह महान पावै नानक पासे तीगर जावै जे प्रसाद रो कंचन देही लिवलाभ तिस राम स्नेही जे प्रसाद राहुला रहत मन सुख पावे हर हर जस कैद जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाकै मन सरणी प्रभु ठाकुर प्रभु ताकै जे प्रसाद तुझको ना पहुँचै मन सा सा सिमरो प्रभु उचै जे प्रसाद पै दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करहे जे प्रसाद भूखन पहरी जय मन तिस प्रिमृत क्यों आलस की जय जे प्रसाद अस हस्त सवारी मन तिस प्रभु को कबू ना बिसारी जे प्रसाद बाग मिलख तना राग प्रोहे प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बंद बनाई ऊठ बैसा तिसे ते आई तिसे ते आए जो एक लख इहां उहां नानक तेरी रखै जे प्रसाद करे पुन बोदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार बिहारी तिस प्रभु को सा सा चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत रहे गुर प्रसाद नानक जस कहे जे प्रसाद सुने करनाद जे प्रसाद पेखे विस्माद जे प्रसाद बोले अमृतसर रसना जे प्रसाद सुख सहि जे बसना जे प्रसाद हस्त कर चला जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परमगत पावै जे प्रसाद सुख सहि समावै ऐसा प्रभु त्याग अवर गत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल न मनो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर्तता को जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावे साज रे मन मेरे तू तास्यो राज जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपे सो नानक जाप जपे जप सोए आप जपाए जपे सो नाओ आप गवाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभु दयाद मल उत्तम होए सर्वनिदान प्रभु तेरी मया आपू कछु न किन्हु लया जे जित लाभ तेत लगे हर नाथ नानक इनकै कछु नाथ श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म।

सत्संग अमृत रस पुंचा, सत्संग हो सब की रेन, साध के संग मनोहर बहन, साध के संग न कदूं तावे, साध संग अस्तित मन पावे, साध के संग माया ते भिन्न, सत्संग नानक प्रभ सो प्रसन्न, साध संग दुश्मन सब भीत, साधु के संग महापनीत, साध संग के सो नहीं भैर, साध के संग न भींगा पैर, साध के संग नहीं को मंदा, सत्संग जाने परमानंदा, साध के संग नहीं अताप, साध के संग तजे सब आप, आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बन आई, साध के संग न कबू तावे, साध के संग सदा सुख पावे, साध संग बस अगोचर लहे, साधु के संग जर सहे, साध के संग बसे धन उचे, साधु के संग महल पहुँचे, साध के संग दृढ़े सर सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म, साध के संग पै नाम निधान, नानक साधु कह कुरबान, साध के संग सब कुल उधारे, सत्संग साजन मीत कुटुंब निस्तारे, साधु के संग सो तन पावे, जिस तन ते सब को बरसावे, साध संग धर्म रहे करे सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा, साधु के संग पाप लायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध के संग सर्व थान गामा, नानक साध के संग सफल जनामा, साध के संग नहीं कज काल, दर्शन भेड़ होत निहाल, साध के संग कलूखत हरे, साध के संग नरक पर हरे, साध के संग यमुआ सहेला, साध संग बिशरत हर मेला, जो इच्छे सो ही फल पावे, साध के संग न बिरथा जावे, पार ब्रह्म साध रित बसै, नानक उसे साध सुन रसै, साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साध के संग न मन ते बिसर, साध संग सर पर निस्तर, साध के संग लगे प्रभ मीठा, साधु के संग घर घर डीठा, साध संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पही हमारी, साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग, साध की महिमा भेद न जान है, जेता सुन तेता बखयान है, साध की उम्मा ते गुण ते दूर, साध की उम्मा रही भरपूर, साध की शोभा का ना ही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊजते ऊंची, साध की शोभा मूजते मूची, साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई, श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखे एक सबिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, अश्वरी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर्य सर्व को सोख, ब्रह्म ज्ञानी के दृश्य

का ए गुनाव नानक ज्यो पावक का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल देह निर्मला जैसे महल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रगाश जैसे तारे ऊपरे आकाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सदर समान ब्रह्म ज्ञानी के नाय अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा मन अपना है सब थे नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी से लकीरीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी जे कछ पुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दिस अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान

परम ज्ञानी कह हो सुफला, परम ज्ञानी सुफल फला, परम ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार, परम ज्ञानी कह एक रंग, परम ज्ञानी के बसे प्रभ संग, परम ज्ञानी के नाम हजार, परम ज्ञानी के नाम परिवार, परम ज्ञानी सदा सद जागत, परम ज्ञानी ओम बुद्ध त्यागत, परम ज्ञानी के मन परमानंद, परम ज्ञानी के कर सदा आनंद, परम ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता, ब्रह्म ज्ञानी के हुए चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाव, ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दस बट भागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी

ज्ञानी के सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाए अदाखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सदजीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुक्त जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सभी ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी

चौवर नाम जपे को नाम, जो जो जपे तिसकी गत होए, साध संग पावे जन कोए, कर कृपा अंतर उर तार है, पस प्रेत मुक्त पाथर को तार है, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू युक्त किते ना पाइये धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर करम, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास, आत्म राम जिस नदरी आया, दास संतन पाए तन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगाह परवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सोझी परे, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभु की आज्ञा आत्म ही तावे, जीवन मुक्त सो कहावे, तैसा हर तैसा उसोग, सदा नंत नहीं बियोग, तैसा सुन तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी, तैसा मान तैसा अमान, तैसा रंग तैसा रजान, जो वरताए साई जुगत, नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित घर राखे तैसा दिन नाओ, आपे करन करावन जोग, प्रभ पावे सोई फनोग, पसरो आप होए नंतरंग, लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग, जैसी मादे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पै निहाल, श्लोक उस्तत करे अनेक जन, अंत न पारावार, नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनक प्रकार, अष्टपति कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार विहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमेय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपी सर होते, कई कोट आत्म ध्यान तार है, कई कोट कब का विचार है, कई कोट नवतन नाम से आवै, नानक करते का अंत न पावे, कई कोट पै अभिमानी, कई कोट अंध ज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अपेगा आत्म निकोर, कई कोट पर दर्प को हिर है, कई कोट पर दुख न कर है, कई कोट माया श्रम्भाए, कई कोट परदे परमाए, जित लावो तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सज्जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प पाए, कई कोट पाथर बिरख न पिजाए, कई कोट पवन पानी बेसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सस सूर नखत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर शतर, सगल समग्री अपने सूह तारे, नानक जिस जिस भावे तिस तिस निस्तार है, कई कोट राज तामस साधक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अरसास, कई कोट किए रत्न संबंध, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर सुवर्ण थीवे, कई कोट जक प्रसाद, कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाज, सब ते नेरे सब होते दूर, नानक आव लिप्त रहा भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग नवासी, कई कोट जन्म जीवे मर है, कई कोट बोझो नी फिर है, कई कोट बैठ दी खाए, कई कोट काले थक पाए, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया में चिंत, जय जय भाणा तै तै राख, नानक सब कृपा कह हाथ है, कई कोट पै बैरागी, राम नाम संग तिल निभलागी, कई कोट प्रभ को खोजनते, आत्म में पर ब्रह्म लहनते, कई कोट दर्शन प्रप्यास, तिनको मिलियो प्रभ अविनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक दे जन सदा धन धन, कई कोट खानी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट होए अवतार, कई युग कीनो विस्तार, कई बार पसरे उपासार, सदा सदा एक एक अंकार, कई कोट कीने बहुपात, प्रभ ते हो प्रमेह समात, ताका अंत न जाने कोए, आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होत आत्म प्रगास, कई कोट तत् के बेते, सदा निहारे को नेतरे, कई कोट नाम रस पीवे, अमर पै सद सद ही जीव है, कई कोट नाम गुण गावे, आत्म रस सुख सहज संभावे, अपने जन को साथ साथ संवारे, नानक होए परमे

गले अश्वरी जिसके अंतराज अभिमान सो नरक पाती हो वद सोवान जो जाने मैं जो बनवंत सो तो विष्टा का जंत आपस को कर्मवंत कहावे जन्म मरे भोजोन परमावे तन भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक इहां मुक्त आगे सुख पावे तनवंता होय कर गर भावे त्रिसमान का संग न जावे बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आज पल पीतर ताका होए विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिन में होए जाए पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जाका मिटे अवमान सो जन नानक दरगा परवान कोर कर्म करे सो तारे श्रम पावे सगले फिर तारे अन तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर फिरे अवतार अनख जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दरगा को कैसे गवे आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई तिसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेन जा का मन होए कहो नानक ताकी निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछु होए तब इसको सुख ना ही कोए जब बे जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन में फिरता जब तारे कोई बैरी मीर तब लगने चल ना ही चीर जब लग मोह मगन संग माए तब वो लग धर्म राय दे सजाए प्रभु कृपा दे बंधन टूट गुर प्रसाद नानक हो छुट सहस कटे लाकोठ तावे त्रिपत नाया हवे माया पाशे पावे अनक भोग बिखया के करे न त्रिपत आवे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राजे सुबन मरो बिरथे सब काजे नाम रंग सर्व सुख होए बड़पाकी किसे प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करने हार इसके हाथ कहाँ विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो कुछ किनो सो अपने रंग सब ते दूर सबू कै संग बूझे देखे करे विवेक आपे एक आपे अनेक मरे न बिन से आवे न जाए नानक सद ही रिया समाए आप उपदेशे समझे आपे रजिया सब कै साथ आप किनो आपन विस्तार सब किश उसका वो करने हार उसते भिन्न कहो किश होए तान थनंतर एक कैसोए अपने चल तब करने हार कौत करे रंग पार मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत कहन न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने मुखयानी सच सच सच सब कीना कोट मदे किने बिरले चीना पला पला पला तर रूप अर सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कट कट सुनी सरवण बघयानी पवित्र पवित्र पवित्र पनी

आप अविनाशी ना ही किस खंड तारन तार रहे हो ब्रह्मांड लाख पे पुरख प्रताप आप जपाए नानक जाप जिन प्रभ जाता सो शोभावंत सगल संसार उदरे तिन मंत प्रभ के सेवक सगले उदारन प्रभ के सेवक दुख बिसारन आपे मेल लहे कृपाल गुर का शब्द जपहे निहाल उनकी सेवा सोई लागै जिनु कृपा करे बड़ पागै नाम जपत पावे बिसराम नानक तिन पुरख को उत्तम करमान जो किश करे सो प्रभ कह रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुभाए होवे सो होए करणे हार पिछाणे सोए प्रभु किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दिष्टाना जिस ते उपज तिस महे समाए वे सुख निदान उन्हों बन आए आपस को अब दिन हो मान नानक प्रभु जन एको

मन बसरा कोट पराध साध संग मिटै संत कृपा ते जमते छुट जाके मस्त करम।

смотри. Один. Окей. Okay. So, कीर्तन दी समाप्ति का टाइम तकरीबन हो चुका है। हुक्म होया सी शब्द लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। दो चार मिनट का टाइम अपने कोल है, सो टाइम दे विच रहिंदे आपां शब्द की समाप्ति करनी। गुरु मेहर करे साडा तुहाडा सारिआं दा गायन कीता सरवण कीता नाम मालक जी थाए पाउण जी। गुरु मेहर करे आओ बड़े प्यार सत्कार नाल शब्द नूं गायन सरवण करना करें।

समरथ एकाथ अगोचर जियो पिंड तेरी रास रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास। वाहिगुरु जी। कबीर सुरग नरक ते मैं रहयो सतगुर के प्रसाद चरण कमल की मौज मैं रहूं अंत यार याद। कबीर चरण कमल की मौज को

करके भी अगले जान मैनू स्वर्ग मिलेगा, इस करके। एक आरा दिल्ली की धरती से चलदा ते उहदे थले गुरु साहब का एक सिख बैठा है, उहदा नाम है भाई मती दास। की भाई मती दास इस करके बैठा है भी मैनू कोई स्वर्ग मिलेगा? नहीं। की भाई मती दास जिहड़ा है वह मौत तो खौफ खा के बैठा सी कि उन्हूं धक्के नाल बिठा दिता गया, वह भी नहीं है। कि भाई मती दास नूं कोई ऐसा लालच सी? नहीं। वह इस करके बैठा, मेरा मूंह मेरे गुरु दे वल रहना चाहिए, मैं गुरु दे सन्मुख हाँ तो स्वर्ग विच हाँ, मैं गुरु तो मूंह फेर लिया तो मैं नरक विच हाँ। ते दूजी गल यह है भी मैनू मौत तो बाद किसी स्वर्ग की लोड़ नहीं, ए दुनिया ए संसार स्वर्ग बनना चाहिए, इत्थे जुल्म नू ठल पैनी चाहिए। हुण दोहां आरियां विच बड़ा वड्डा फर्क है। बाबा कबीर साहब ने कहा, क्या नरक क्या सुरग बिचारा, संतन दो रादे हम काहू की कान ना कढ़ते। कान का मतलब की हुंदा? जिवें आपां एक शब्द वरदे, सानू किसी की कान है? कान बंदे किहड़े बंदे? ये वैसे मंजियां च कान हुंदी सी, पता मंजियां च काणू आनी, फिर वो जी लकड़ है वो स्टेबल वो पैर ना थले लगना, आप कहने ये काणू है मंजे च। जां बंदा कहिंदा मैं किसी का काणा, तुसीं आपां काणे कदों ने, मान लो तुसीं किसी के पैसे मारे हो सामने, वो बंदा आ जाए तो बंदा कहिंदा राह बदल लो भी इहदी आपां नूं काण है यार, इहदे पैसे मारे ने मैं। तो जे तुसीं बड़े ईमानदार हो तो तुहानूं किसी की कोई काण है? बंदा ऐ खुल्लेआम तुरदा। तो बाबा कबीर साहब कहिंदे ने मैनू कोई कान ही नहीं, ना मैनू स्वर्ग की लोड़ ना मैनू नरक की लोड़। हम काहू की कान ना कढ़ते अपने गुर प्रसादे, मेरे गुरु की कृपा नाल मैनू स्वर्ग ते नरक की कोई परवाह नहीं रही। इत्थे भी बोल रखे उन्होंने, उन्होंने कहा कबीर सुरग नरक ते मैं रहे ओ। मैं इस फिलोसफी चो ही बहर आ गया, यह पंडितों की सिरजी फिलोसफी है। अच्छा स्वर्ग जिन्हें स्वर्ग घड़िया वह घड़िया किसी बंदे नहीं आ, क्योंकि बंदा ही कहिंदा भी तुहानू हूरां मिलणगियां, कदी बीबियां नूं नहीं कहा भी तुहानू भी हूरे मिलणगे उत्थे। जिन्हें घड़ी है ना यह फिलोसफी, वह घड़ी बंदे नहीं है, उन्हें कहा। अच्छा जिहड़ा हुण जिहड़ा इत्थे गुनाह है वह सारा कुछ स्वर्ग च की हुंदा? माफ हुंदा। इदा ही है ना, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਚਸ਼ਮੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਚਸ਼ਮੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹੂਰਾਂ ਤੇ ਹੂਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਸ਼ਮੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਪਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਨਰਕ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਪ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੀਓ ਤਪਤ ਹੈ बारो बार, इत्थे भी तो बंदा तप ही रहा, किसी का चंगा वेख के अंदरों तपया ही फिरदा। हुण तपया बंदा नरक च ही हुंदा, जीओ तपत है बारो बार, इत्थे भी तपया फिरदा। असाड़ तपंदा तिस लगे हर ना ना जिन्ना पास, महाराज ने आख्या आख्या हाड़ का महीना तपदा उन्हां नूं लगदा जिन्हां कोल रब का ना नहीं हुंदा। अच्छा जिहड़े टब्बर जिहड़े लोग गुरु की विचार नालों टुटे हुए ने, तुहानूं वेखण नूं सुखी लगते ने पर तपे पए ने, सुख नहीं हैगा, शांति नहीं हैगी। हुण बंदा मर गया जी, ईरखा करदा नफरत करदा, ते मगरों लिखाउणा ते सौखा है भी स्वर्गवासी फलाना सिंह है। कई बार पता हुंदा ना बंदे नूं भी ये स्वर्गवासी सी के नरकनवासी सी। असीं ते सारे ने स्वर्गवासी लिखाउणा, मैं मरूंगा भावें कम मेरे नरकां वाले होण, घरदिआं मेरे भी पुत ने इहो ही लिखाउणा भी बापू साडा स्वर्गवासी सी। पर जिन्हें स्वर्ग सच्ची भोगया होवे ना वह परिवार ही होर हुंदे ने। अच्छा जिन्हां परिवारां विच ही एकता है, इतफाक है, जिथे एक गल एक दूजे की गल सुनी जाती है, एक दूजे नूं अंडरस्टैंड किया जाता है, तुसीं दसो उस टब्बर नूं मरन तो बाद किसे स्वर्ग की लोड़ हैगी है? लोड़ हमेशा जदों तुसीं प्रशादा छक के रज गए जी, मगरों प्रशादे की लोड़ रहिंदी है? लोड़ हमेशा जिहड़ा भुखा रहेगा उहनूं लोड़ है, जिहड़ा रज्जिया होया उहनूं किसे चीज़ की लोड़ नहीं, जिहड़ा सच्ची रज गया। हुण जिन्हें जिहड़ा स्वर्ग विच ही जी रहा, इत्थे भी जिहड़ा स्वर्ग जी रहा आनंद विच है, उहनूं नहीं लोड़ हैगी किसे स्वर्ग की। आपां इत्थे नरक भोगदे हां इस करके असीं

तुमरी कृपा में कोई ना जाने, ऊंचे ते ऊंचा सगल समग्री तुमरे, तुम ते हो ए सो तुमरी गात मेत, नानक दास तुमरी गात मेत तुम ही जा, नानक दास बोलो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु, वाहिगुरु जी क्यों ओंकार, वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भौती जी सहाय वार, श्री भौती पातशाही दसवें प्रथम भगौती सिमरक है, गुरु नानक लई त्याए, फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय, अर्जन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय, श्री हर किशन त्याई है, जिह डिठै सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै कर नौन दे आवे ताए, सब थाई होई सहाय, दसवें पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी हो, सब थाई होई सहाय, दसों पातशाहियों की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पवित्र पाठ दे दर दे अंतर खालसी, सब बोलो जी वाहे। पंजा प्यारियां चौं सबजादे हैं, चालियां मुक्तियां अठियां जपियां तपियां, शहीद सिंघां सिंघणियां जिन्हां नाम जपया, वंड छकिया देख चलाई तेगवाई ते केंद्र कीता, तिन्हां गुरमु प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यांतर खालसी, सब बोलो जी वाहे। जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्म सी दिते, बांध बांध कटवाए चरखड़ियां ते चढ़े, आरिया नाल तन चरवाए, उबलदियां देगां विच उबाले गए खोपरियां लुहाईयां, गुरुद्वारियां दी सेवा संभाली कुरबानियां कीतियां, तेरे भाणे नूं मिठा करके मन्निया, असहे ते कहिगा सहार दे शहीदो सिकिद के सां सवासां संग नभाई धर्म निहारिया, तिन्हां समूह शहीद सिंघां सिंघणियां दी कमाई दा ध्यांतर खालसी, सब बोलो जी वाहे। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां जी का ध्यान दर खालसी, सब बोलो जी वाहे। प्रथम खालसे जी की अरदास है जी, सरबत खालसे जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, चेतावे चेतावन का सदका सर्ब सुख होवै, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रक्षा रहा, दे ते फतेह बिरद की पैज, पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय, खालसे जी के बोलबाले खालसे, सब बोलो जी वाहे। सिखां नूं सिखी दान, केस दान, रह दान, विवेक दान, वसाह दान, भरोसा दान, दाना सरदान, नाम दान, श्री अमृतसर साहब जी के इशनान, चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगा टल, धर्म का जयकार, खालसे जी के बोलबाले खालसे, सब बोलो जी वाहे। सिखां ना मन नीवां मत उच्चे मादे राखे, आप अकाल पुरख अंतर जामे, गुरु गरीब निवास जी पातशाह पन दे सदा सहाय दार पिता जी हो, श्री ननकाणा साहब और गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो पंथ नूं छोड़िया गया, सेवा संभाल अपने खालसा जी नूं बख्शो, निमाणिया दे माण नताणिया दे ताण, न्योटिया दी औण आसरिया दे आसरे, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पातशाह जी आप दे पार बख्श रहमत कृपा दा सदका सरबत दे भले लई, पंथ दी चढ़दी कला समूह संगतां दी सुख शांति वास्ते, अते कीता लोड़ी कम सो हर पै आखी है, कार्य दिओ सवार सतगुरु सच साखियां दे महागुरमो परिवारां वल्लों, बच्चियां दे आनंद कार्ज दी सफलता दी जाचना करदे होया, ते कलेर परिवार वल्लों बच्चे दे जन्म दी खुशी विच, अते इसे तरह गिल परिवार वल्लों बच्चे दी जन्म दी खुशी विच, अते इसे तरह दाता जी पिंड कुराली नगर, अते इसे तरह संत प्रेम सिंह जी दाता जी दे समूह परिवारां वल्लों आप संगतां दे चरण प्रसन्न करदे होया, गुरु के चरण प्रसन्न कीते ने, कीर्तन कथा सुखमणी साहब दे पाठ लंगर दी सेवा होई, मेहर करनी दाता जी परिवारां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना, सरबत परिवारां दी चढ़दी कला लई आप दे हजूर दीवान सजे, सजे दीवाना विच आप दे हाथ जस होए ने, कीर्तन कथा ढाडी वारा अते आहदी सेवा करदे होईयां पुल्लां बख्श लैणियां, पढ़ी सुनी बाणी दा भाव सरबत संगतां अते समूह परिवारां दे हिरदियां विच वसाउणी, मेहर करनी दाता जी परिवारां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना, परिवारां दी सेवा थाए पाउणी, बच्चियां दे कारज अपने अंग संग सहायक के संपूर्ण करने, समूह परिवारां नूं ते बच्चियां नूं खुशियां भरिया जीवन बख्श के निहाल करना, अंग संग सहायक के वर्तना काका आजाद सिंह नूं, दाता जी वड्डियां उमरां गुरसिखी जीवन माता पिता आग्या करी बच्चा देश कौम दा सेवक शुभ गुण बख्शिश करने, आउण वाला समां चढ़दियां कला दा बख्श के सुराने वजों परिवारां ने दाता जी आप दे धार्मिक कारजां वास्ते बिंद माया
ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਲੰਗਰ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਭਾ ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਔਰ ਜੋ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਮੋ ਪਿਆਰੇ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪਵਾਨੀ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵਰਤਾਉਣਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆਸ ਕਰਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, 1984 ਦੇ ਸਮੋਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਯਾਦ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮ ਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੁਰਮੋ ਪਿਆਰੇ ਮਿਹ ਲਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਰ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਗੀ।

सांझा करे कबीर सिंहो, हर संग मनज करे कबीर एह चेतावनी, मत सहसा रह जाय पाछै भोग जो भोग वै, तिनको गुण लै खाहे।

राव रहे अवर तजई सब काम। कबीर परदेसी कै घाघरा चौं दिस लागी आग, खिंथा जल कोयला पही तांगे आँच न लाग। कबीर खिंथा जल कोयला पही खापर फूट म फूट, जोगी बापुड़ा खेलो आसन रही बपूत। कबीर थोर जल माछली चीवर मिलो जाल, ए टोगन न छूट सह फिर कर समुंद संभाल। कबीर समुंद न छोड़िए जो अत खारो होए, पोखर पोखर ढूंढते पलो न कह कोए। कबीर निगसाए बह गए थांगी नाही कोए, दीन गरीबी अपनी करते हुए सो होए। कबीर वैष्णो की कुकर भली साकत की बुरी माए, ओ नित सुन हर नाम जस

कमल, कबीर गंगा तीर जो गर करे, पीवे निर्मल नीर, बिन हर भगत न मुक्त होए, इउं कह रमै कबीर।

कीर्तन हरै चून चहन ना रहाए बलिहारी एह प्रीत को जहन जात बरन कुल जाहे कबीर मुक्त दुआरा संकुरा राई दस पाए मन तो मैगल हो रिहो निकसो क्यों कह जाए कबीरू ऐसा सतगुरु जी मिले तुठा करे पसाऊ।

मातहर पूछे कौन है मेरे जात ना नाव, कबीर मोहे मरने का चाउ है मरो तहर के द्वार। मातहर पूछे कौन है पर हमारे बार।

कबीर कबीर स्वप्न हूँ बुराए कै जय मुख निश राम ता के पग की पानी मेरे तन को चाम। कबीर माटी के हम पूतरे मानस राखियो नाऊ चार दिवस के पहुने बड़

जाए, कभू न लाई पाए। कबीर जहेंदर आवत जाति हो, हटके नाही कोय। सो दर कैसे छोड़िए, जो दर ऐसा हो। कबीर डूबा था पै उबरियो, गुण की लहर चमाको। जब देखियो बीड़ा जर जरा, तब उतर परियो हो फरक। कबीर पापी भगत न बावई, हर पूजा न सहाय। माखी चंदन पर हरै, जह बगंध तह जाए। कबीर बैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सब संसार। एक कबीरा नाम मुआ, जह नाही रोवनहार। कबीर राम ना त्यायो, मोटी लागी खोर। काया हांडी काठ की, ना उह चरे बहोर। कबीर वैसी होए परी, मन को पावत कीन। मरने ते क्या डरपना, जाबुआ आत सुंदौरा लीन। कबीर रस को गांडो चूसिए, गुण को मरिए रोए। अवगुण यारे मानस, पलो न कह कोय। कबीर गागर जल भरी, छाज काल जय फूट। गुर जो न चित है अपनो, आंदमाज ली जाएंगे लूट। कबीर कुकर राम को, मुतिया मेरो नाओ। गले हमारे जेवरी, जह खिंचे तह जाओ। कबीर जपनी काठ की, क्या दिखलाव है लोए। हृदय राम न चित ही, ए जपनी क्या होए। कबीरा बिरहों पिंगम मन बसै, मंत न माने कोए। राम बेयोगी ना जिए, जिए तंबौरा होए। कबीर पारस चंदन है, तिन है एक सुगंध। तह मिलते उत्तम पहे, लोह काठ निर्गंध। कबीर जम का ठेंगा बुरा है, उह नहीं सहया जाए। एक जूसा दुमहे मिलियो, तिन लिया अंचलाए। कबीर बैद कहे हो ही भला, दारू मेरे वस। ये

नदी नाम संयोग ज्यों बहु न मिल है आय। कबीर सत संबंध है मस करु कलम करु बंदराई। वसुदा कागद जा करु हर जस लिखन न जाय। कबीर जात जुलाहा क्या करे हृदय मसै गोपाल। कबीर रमैया कंठ मेल चूकै सर्ब जंजाल। कबीर ऐसा को नहीं मंदर दे जराए। पंचो लड़कै मार कै रहे राम लियो लाए।

कबीर सती पुकारे चह चढ़ी सुनहो बीर मसान लोग सुबाया चल गयो हम तुम काम निधान।

सूत मिले सूत सुफल खाए, कबीर जा को खोजते पायो सोई ठौर, सोए फिर कह तू प्याव जा को कहता यार, कबीर मारी मरो कुसंग की केले निकट जो बीर, ओ झूले ओ चीरिया साकत संग नाहीर, कबीर पहार पराई सिर चरै चलियो चाहे बाट, अपने पार है ना डरै आ गए औकट काट, कबीर बन की धांदी लाकरी ठांडी करे पुकार, मत बस परु लुहार के जारे दूजी मार, कबीर एक मरण ते दुए मुए दुए मरण ते चार, चार मरण ते छे मुए चार पुरख दुए नार, कबीर देख देख जग ढूंढिया कहू न पाया ठौर, जिन हर का नाम न चेतियो कहाँ पुलाने और, कबीर संगत करिए सादकी अंत करे निर्वाह, साकद संग न कीजिए जाते हुए बिनहा, कबीर जग मैं चेतियो जान के जग मैं रिहू समाई, जिन हर का नाम न चीतियो बंद जन्म आए, कबीर आसा करिए राम की अवरे आस निरास, नरक पर है ते मानई जो हर नाम उदास, कबीर सिख साखां बहुते किए

केश मुंडा एकाई, जो कुछ किया सो मन किया, मुंडा मूड अजाए। कबीर राम ना छोड़िए, तन धन जाए तां जाऊ, चरण कमल चित बेदिया, रामै नाम समाऊ। कबीर जो हम जन तुम जावते, टूट गई सब तार, जंत बिचारा क्या करे, चले मजा बनुहार। कबीर माए मुंडो तहें गुरु की, जाति जाते भरम न जाए, आप डुबे चौबेद महे, चेले दिए महाए। कबीर जेते पाप किए, राखी तले दुराए, प्रगट पहे ननान साब, जब पूछे धर्म राय। कबीर हर का सिमरन छाड़ कै, पाल्यो बहुत कुटुंब, धंधा करता रह गया, भाई रिहा ना बंद। कबीर हर का सिमरन छाड़ कै, रात जगावन जाए, सरपन हुई कै उतरे जाए अपने खाए। कबीर हर का सिमरन छाड़ कै, आहोई राखै नारू, गधे हुई कै उतरे पार सह मन चार। कबीर चतुराई अत कनी, हर जा फिर दे माहे, सूरी ऊपर खिलना, गिरे तठाहल नाहे। कबीर सुई मुख तन है, जा मुख कहिए राम, देह किसकी बापुरी, पवित्र होए गो ग्राम। कबीर सोई कुल पली, जा कुल हर को दास, जह कुल दास न उपजै, सो कुल ठाक पलास। कबीर है गए महान सगन कहन, लागत जा फैराहे, या सुख ते पिखिया भली, जो हर सिमरत दिन जाहे।

नहीं सम देखी ठोक मिजाए मार्ग मोती बीथर अंधा निक्षु आए जोत बिना जगदीश की जागते उलंघ जाए बूढ़ा वंश कबीर का उपजियो पूत कमाल हर का सुमरन छाड़ कै कर लै आया माल कबीर साधु को मिलने जाइए साथ न लीजै कोए पाछे पाओ न दीजिए आगे हुए सो होए कबीर जगबा दो जहें जे वरी तह मत बधो कबीर जहें आटा लोन ज्यो सोन समान शरीर कबीर हंस उड्यो तन गाड्यो सूजाई सै नहा अजो जियो ना छोडई रंकाई नै नहाओ

आई कबीर चुगे चितारे पी चुगे चुग चुग चितारी जैसे बचर कूंज मन माया ममतारी कबीर अंबर कन्हर छाया बर्ख पर

ताही कै संग लाग, कबीर संत के गैल ना छोड़िए, मार्ग लागा जाऊ, पीखत ही पोनीत होए, पीड़त जपिए नाउ। कबीर साकद संग न कीजिए, दूर हैं जाइए भाग, भाषण कारू परसिए तो।

तिस बिन दूसर को नही एकै सिर जनहार। कबीर फल लागे फल न पाकन लागे आंब, जाए पहुंचे खसम को।

संसार इस पर वासी जो रहे बूढ़े काली तार, कबीर कागद की उबरी मस के कर्म कपाट, पहान बोरी प्रथमी पंडित पाड़ी बाट।

जमपुर मेरे पाई, कबीर गंग जमन के अंतरे, सहज सुन के काट, तहा कबीर है मट किया, खोजत मुन जन बाट। कबीर जैसे उपजी पेड़ ते, ज्यों तैसी निभय औड़, हीरा किसका बापुरा, पूजै न रतन करोड़। कबीरा एक चंभव देखियो, हीरा हाट मिकाई, बंजन हारे बहारा, कौड़ी मदले जाए। कबीरा जहां ज्ञान तह धर्म है, जहां झूठ तह पाप,

लैकी मंड हाट जब ही पाई है पारखू तब ही रन की साट कबीर काम परे हर सिमरिय।

देवसचार कोपी खना अंत खे की खे कबीर सूरज चांद कै उदय पही समे गुर गोबिंद के मिल बिन मिले पलट पही सब खे।

आए। कबीर हज काबे हुई जाए था, आगे मिलया खुदाई, साईं मुझ स्यों लर परिया, तुझे कहने

दावतर लिखा नीक सै मार मुहे मुहे खाए, कबीर लिखा देना सुहेला ज्यों दिल सूची होए। उस साची दीवान है पल्ला न पकड़े कोय, कबीर धरती अरे आकाश महै दोए तू बड़ी आबादू खट दर्शन।

जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागै मेरा। कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हो। जब आपा परका मिट गया, जात देखूं तत तू। कबीर बिका कबीर बिकारे चितवती, झूठे करते आस मनोरथ कोई ना पूरे हो। चाले ऊठ निराश कबीर हर का सिमरन जो करे, सो सुखिया संसार एते उत कथे ना डोले। जिस राखै सिर जनहार कबीर कहानी पीड़ते,

कृष्ण के एक ओंकार सतगुर प्रसाद जित दिहाड़ै धन वरी साहे लै लखाए मलक जे कन्नी सुनी दा मुँह दिखाले आए जिंद न माणी कड़ी है हड्डा कूकड़ काए साहे लिखे न चलनी जिंदू को समझाए जिंद वहटी मरण वर लै जासी प्रणाए अपनो हथी झूल कै गल लगे ताए बालो निक्की पुरसलात कन्नी ना सुनी आए फरीदा केड़े पवंदे खड़ा नया पमुहाए फरीदा दर दर वेसी गाखड़ी

हेड़ा जले मजीठ ज्यो उपर अंगारा फरीदा लोड़े दाख बजौरिया किकर भी जय जाट

पिज्जो सिज्जो कंबले अल्लाह वर्षों में जाए मिला तिन सज्जना टुटो नाही ने फरीदा मैं पुलावा पगदा मत मैली हुए जाए गहला रूह ना जाने सरपी मिट्टी खाए फरीदा शक्कर खंड नवात गुड़ माखियो माजा दुद सबे वस्तु मिठिया रब न पूजन तुद फरीदा रोटी मेरी काठ की लावण मेरी भुखा जिन्ना खादी चुपड़ी कणे सहन गे दुख रुखी सुखी खाए कै ठंडा पानी पियो फरीदा देख पराए चोपड़ी ना तरसाए जियो आज न सुती कांत से अंग मुड़े मुड़ जाए जाए पुछो डोहागणे तुम क्यों रहन विहाए सौरा ढोई नाल है पहिए नाही थाओ फिर वातड़ी ना पुछई तन सुहागण नाओ सौरा पहिए कंत की कंत अगामी अथाओ नानक सो सुहागणी जो पावै बेपरवाह नाती धोती संभही सोती आए।

जो सैर ते अपने तित तन लोभ रत ना होए, पै पइए तन खीण होए लोभ रत विचों जाए। ज्यों बसंतर धात शुद्ध होए त्यों हर का भौ दुरमत मैं लंगवाए। नानक ते जन सोहणे जेर ते हर रंग लाए, फरीदा सोए सरवर ढूंढ लो जिथों लब्बी वाथा। छप्पड़ ढूंढे क्या हुवै चिकड़ डुबे हाथ, फरीदा नंडे कंत न रावियो बड़ी थी मुई आस। धन को कहंदी गोर मैं तैसै ना मिलियास, फरीदा सिर पलिया

सौवसै मास नत दुखाहे फरीदा गोर निमाणी सड करे नी करया करे आओ सर पर मैथ यावना मरणो ना डैया हो।

सगल पवन तारे एक थे किए बिस्तारे, पूर रहे उस्रब में आप है निरारे। हर गुण नाई अंत पारे, जी जंत सब थारे। सगल को दाता एक लख मुरारे, आप ही तारण तारे। कुदरत है देखारे, बरन चहन नाही मुख नाम सारे। जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसर।

मुक्ते प्रभ दातो दातार परयोजा चकिक सरना मिले दान संत रेन जेह लग पव जल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावै देव दर्श मन चाओ भगत ए मन ठहरावै बलियो चिराग दियार मैं सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर पवन मह जन नानक गुरपार ब्रह्म सवैये श्री मुख बाक महला पंजवां एक ओंकार सत गुर प्रसाद काची देह मोफन बांदी साठ कठोर कुचेल कुज्ञानी तावत भ्रमत रहन नहीं पावत पार ब्रह्म की गत नहीं जानी जोबन रूप माया मद माता बिचरत बिकल बडौ अभिमानी पर धन पर अपवाद नार निंदा यह मीठी जी माहे हितानी बलबंच छाप करते उपावा पेखत सुनत प्रभ अंतर जामी

भोजन की सब सूझ परी, वर्धमान होवत दिन प्रात, नित आवत निकट बिखम जरी। रे गुणहीन दीन माया कृम, सिमर स्वामी एक करी, कर गै ले हो कृपाल कृपा निद, नानक काट परम परी।

झूल संग झूलत माया मगन प्रमत कुगना सुध बनता साजन सुख बंदप तास्यो मोह बड़ियो सोकना बोयो बीज अहं मम अंकर बीतत औद करत यगन्ना मृत मंजार पसार मुख निरखत पुंचत पुगत भूख पुखना सिमर गोपाल दयाल सतसंगत नानक जग जानत सुपना देह ना गहना नेह ना नीता माया मत कहा लो गारू छत्र ना पत्र ना चौर ना चावर बैती जात हृदय ना बिचारू रथ ना असव ना गज सिंह आसन

खानम संग न को दृष्ट निहारो, कोट ना ओट ना कुस ना छोटा, करत बिकार दो कर चारो, मित्र ना पुत्र कलत्र साजन सख, उल्टत जात बिरख की छारो। दीन दयाल पुरख प्रभ पूर्ण, छिन छिन सिमरो अगम्या पारो, श्रीपत नाथ शरण नानक जन, हे भगवंत कृपा करतारो।

साजन सैन मीत सुत पाई, ताहू तेले रखी निरारी। तावन पावन कूरक मावन, एह बिद करत औद तन जारी। कर्म धर्म संजम सुच नेमा, चंचल संग सगल बिदहारी। पस पंखी बिरख अस्थावर, बोहबिद जोन भ्रम्यो अत भारी।

खान पान मीठ रस भोजन, अंत की बार होत कत खारी। नानक संत चरण संग उदरे, होर माया मगन चले सब डारी। ब्रह्मादिक शिव चंद मुनि सर, रस करस ठाकुर गुण गावत। इंद्र मुनिंदर खोजते गोरख, तरण गगन आवत फुण तावत। सिद्ध मनुख देव अर दानव, एक तिल ताको मर्म न पावत। प्रिय प्रभ प्रीत प्रेम रस भगती, हर जनता कै दृश समावत। तिसै त्याग यान को जाचै, मुख दंत रसन सगल कस जावत। रे मन मूड सिमर सुख दाता, नानक दास तुझे समझावत। माया रंग बिरंग करत, भ्रम मोकै कूप गुबार पर्यो है। एता गब आकाश न मावत, बिष्टा अस्त क्रिम उदर पर्यो है। दह दिसताए महाबिखिया को, पर तन छीन अज्ञान हरयो है। जोबन बीत जरा रोग ग्रस्यो, जमदूतन डन मृत मर्यो है। यनक जोन संकट नरक पुंचत, शासन दुख गर्त गर्यो है। प्रेम भगत उदरे से नानक, कर कृपा संत आप गर्यो है।

पर दुख हर सर्ब रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मत्सर तृष्णा बिन सजाए हर नाम उचारी। स्नान दान तापन सुच क्रिया चरण कमल हृदय प्रभ तारी। साजन मीत सखा हर बंदप जी तान प्रभ प्राण अंदारी। ओट गई स्वामी समर्था नानक दास सदा बलिहारी। आवद कट्यो न जात प्रेम रस चरण कमल संग। दावन बंद्यो न जात बिदे मन दर्स मग। पावक जर्यो न जात रहयो जन तूर लग। नीर नसा किस बोर चले हर पंथ पग। नानक रोग दोख अग मोच दय हर नाम खग। उद्यम कर लागे बहुपाती बिचरा निक शास्त्र बहु खटुआ। पसम लगाए तीर्थ बहु भ्रमते सूखम दे बंदा बहु जटुआ। बिन हर भजन सगल दुख पावत जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ। पूजा चक्कर करत सुम पाका अनक भांत थाटे कर थटुआ। सवैये महले पहले के इक ओंकार सत गुर प्रसाद। एक मन पुरख त्याय बरदाता संत सहार सदा बिखिया ताता। चरण ले हृदय बसावो तो परम गुरु नानक गुण गावो। गावो गुण परम गुरु सुख सागर दुर्त निवारण शब्द सरे। गावे गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान तरे। गावे इंद्राद भगत प्रहलादक

गावै गुण बरन चार खट दर्शन ब्रह्मादिक सिमरंथ गुणा। गावै गुण शेष सहस जे बारस आद अंत लिव लाग तुना। गावै गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर।

राज जुग मणियो बस्यो निर्वैर निरंतर, सृष्ट सगल उदरी नाम ले तरियो निरंतर। गुण गावै सनकाद आद जनकाद जुगालग, धन धन गुर धन जन्म सके अथ पलो जग।

जे मत गही जय देव, जे मत नामै सम्माणी, जे मत त्रिलोचन चित, भगत कंबीरै जानी। रुक मंगद करतूत राम जम्पू नित पाई, अमरीक प्रहलाद सरन गोबिंद गत पाई। तै लोभ क्रोध तृष्णा तजी, सो मत जल जानी जुगत, गुर अमरदास निज भगत है।

सहज तरोवर फलियो ज्ञानी अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाइय धन ते जन बड़भागे ते मुक्ते भय सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कल उचरै तै शब्द निशान बजायो सेज सदा सह शावान संतोख सराचो सदा सीर सना सो है गुरु शब्द समाचरियो नाम टेक संगात बो है आजोनियो पल अमल सतगुर संग निवास गुरु रामदास कल उचरै तो सहज सरोवर वास गुर जिन को सो प्रसन्न नाम हर हृदय निवासै जिन को गुर सो प्रसन्न दुरत दुरंतर नसै गुर जिन को सो प्रसन्न मानि अभिमान निवारै जिन को गुर सो प्रसन्न शब्द लग पव जल तारै पर चौ परमान गुर पायो तिन सकियथो जन्म जागु श्री गुरु शरण पज कल कब भुगत मुक्त सब गुरु लग सतगुर खेमा ताणिया जुग जूल समाणे अन पौ नीजा नाम टेक जित भगत अघाणे गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे ये राज जो गुरु रामदास तुम हो रस जाने जनक सोए जिन जाने आ उन मन रथ तरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकत कथा अमरा पुरी जिस दे

सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जान दुख पाप कहो कत होवै जी उतारण तरण खिन मात्र चंको दृष्ट धार। शब्द रिद विचार काम क्रोध खोवै जी उचियन सबन दाता अगम ज्ञान बिखे आत एहन सत्यान तावै पलक न सोवै जियो। जाको देखत दरिद्र जावे नाम सो निधान पावे गुरमुख ज्ञान दुर मत मैल धोवै जियो। सत गुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो। धर्म करम पूरे सत गुरु पाई है चांकी सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचै शब्द सारे एक लिव लाई है। फोन जाने को तेरा अपार निरभउ निरंकार अकथ कथन हर तुझ है बुझाई है। परम पूले संसार छुट्टो हो जूनी संगार जम को न दंड काल गुर मत त्याई है। मन प्राणी मुक्त विचार अहनस जप धर्म करम पूर सत गुर पाई है। हाँ बल बल जाओ सत गुर साचे नाम पर कवन उपमा देओ कवन सेवा सरियो एक मुख रस नर सोह जुग छोर कर। फोन मन बच करम जान अंत दूजा न मान नाम सो अपार सार दीन गुर रिद धार। नल कव परस परस कस कंजना होय चंदना सुबास जस सिमरत अन तर। जाके देखत द्वारे काम क्रोध ही निवारे जी हो बल बल जाऊं सत गुर सच।

सो जन्म मरण दों थिर है। गुर बिन कोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवै। गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावै। गुर कर सच बीचार, गुरु कर रे मन मेरे। गुर कर शब्द सपौन अघन।

तरण समरथ कलयुग सुनत संवाद शब्द जिस केरे फुन दुखन नाश सुखदायक सूरो जो तरत त्यान बस्त ते नेरे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अक चाहे परेरे जौ हर बुद्ध रिद्ध सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे गुरु मुख देख गुरु सुख पायो होती जो प्यास पीयूष पिवन की बंचत सिद्ध को बिद मिलायो पूर्ण पो मन ठौर बसो रस बासन स्यों जो दहंग दिशतायो गोबिंदवाल गोबिंदपुरी सम जलन तीर विपास बनायो गयो दुख दूर बरखन कोसो गुरुमुख देख गुरु सुख पायो समरथ गुरु सिर हथ तरयो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अघन हरयो निस बासुरी एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत भान डरयो पन दा सुहास जगत गुरु की पारस भेट परस करयो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हथ धरयो अब रखो दास पाट की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हरनाक्ष फारे कर आज फन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी शीनत बस्तर दीन बहुसाज सुदामा अपदा ते राखिया गणिका पड़त पूरी।

प्राणियों शब्द हर हर जपै नाम नाम निधि अपै रस निहन सरस सत कर जानियो। फुन प्रेम रंग पाइय गुरमुख त्याय अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियों। बचन गुर रिद तरो पंच भू बस करो जन्म कुल उद्धरो द्वार हर मानियो। ज्यों तां सब सुख इत उत तुम बंचवो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियों। गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर आगम गुण जन दान हर मन धरो ध्यान अहनस करो बचन गुर हृदय धार। फुन गुरु जल बिमल यथा मजन करो संत गुरु सिख तरु नाम सच रंग सारु। सदा निरवैर निरंकार निरभउ जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हारु। मुग्ध मन भ्रम तजो नाम गुर मुख भजो गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु जप सत करु। गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाइय उधर गुरु गहर गंभीर बेअंत हार नाम नग हीर मन मिलत लिव लाइय। फुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुरु त्याइय। अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुरु बिमल सर संत सिख नाइय। नाम निर्बाण निधान हरि उर धरो गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाइय। गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे जा की सेव शिव सिद्ध साधक सुर असुर कण तरैंत तीस गुर बचन सुन कन रे। फुन तरै ते संत हित भगत गुर गुर करै तरयो प्रहलाद गुर मिलत मुन जन रे। तरै नारदाद सन काद हर गुर मुखै तरै एक नाम लग तजो रस अन रे। दास बेनत कहै नाम गुर मुख लह गुरु गुर गुरु गुरु गुरु जप मन रे। श्री गुरु साहिब सब उपर करी कृपा सत जुग जिन त्रुपर। श्री प्रहलाद भगत उधरियं हस्त कमल माथे पर धरियं। अलख रूप जी लख्या न जाई साधक सिद्ध सगल शरणाई। गुर के बचन सत जी तारो मानस जन्म दे।

गुर प्रसाद प्रभ पाइए, गुर बिन मुक्त ना होए। गुर नानक निकट बसै बनवारी, तिन लैणा थाप जोत जग तारी।

जग जन्म मरण पगा, इह आई ही है प्रतीत, प्रतीत ही है आई जिन जन कै, तिन को पदवी उच्च पई, तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की वृथा गई। अवलोक्या ब्रह्म परम सब छुटक्या, दब दृष्ट कारण करनं, सत गुर गुरु से व्यलक गत जाकी, श्री रामदास तारण तरनं। प्रताप सदा गुर का घट घट, प्रगाश पया जस जन कै, एक पढ़ें सुनें गावें, प्रभात हैं करें इशनान, इशनान करें प्रभात शुद्ध मन, गुर पूजा विद सहत करं, कंचन तन होए परस पारस को, ज्योत स्वरूपी ध्यान तरं। जग जीवन जगन्नाथ, जल थल मैं रया पूर्व विद वर्णं, सत गुर गुर सेवय लख गत जानकी, श्री रामदास तारण तरणं। जिनों बात निश्चल त्रु जानी, तेई जीव काल ते बचा, तिन तरयो समुद्र रुद्र खिनि, एक मैं जल हर बिंब जुगत जग रचा। कुंडलनी सुरजी सत संगत, परमानंद गुरु मुख मचा, श्री गुरु साहिब सब ऊपर।

गुर रामदास चितह बस, गुरु समरथ गय करिया, ध्रुव बुद्ध सुमत सुमारण को, फुन त्रम तुजा फैरंत सदा, अग पुंज तरंग निवारण को, मथुरा जन जान कही जी साच, सो और कछु न बिचारन को, हर नाम बोहित बड़ो कल में, पाव सागर पार उतारन को। संतत ही सत संगत संग, सुरंग रते जस गावत है, तरम पंत तरयो तरणी तर आप रहे, लिव तारन तावत है, मथुरा पन भाग भले उनके, मन इच्छत ही फल पावत है, रब के सुत को तिन त्रास कहां, जो चरण गुरु चित लावत है, निर्मल नाम सुधा परपूरन, शब्द तरंग प्रगटित दिन आगर, गहर गंभीर यथात बड़ सुभर, सदा सब बिदरत नागर, संत मराल करें कंतु हल, तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर, कालयुग दुर्त दूर कर बे को, दर्शन गुरु सगल सुख सागर, जा को मन ध्यान तर फेरत सगल जुग, कब हूं को पाव आत्म प्रकाश को, वेद बाणी सहित बिरंच जस गावे, जा को शिव मन गहना तजात का विलास को, जा को जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप, जटा जूठ भेक किए फिरते उदास को, सो तिन सत गुर सुख पाए कृपा।

संत सदा सुख संपत रे दर सिद्ध न छोड़े साथ दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कयो एह तथ ताहे कहां परवाह काहू की जा कै बसीस धरयो गुर हथ तीन भवन भरपूर रहो सोई आपन सरस कियो न जगत कोई अपने आप ही उपायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो पायो नहीं अंत सुर है असुर नर गण गंधर्व खोजंत फिरे अविनाशी अचल अजूनी संभव पुरखो तुम्हें अपार परे करण करण समरथ सदा सोई सर्ब जी मन त्यायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो सतगुर नानक भगत करी एक माना तन मन तन गोबिंद दियो अंगद अनंत मूर्त निज धारी अगम ज्ञान रस रस्यो हियो गुर अमरदास करतार कियो वस वाह वाह कर त्यायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा पुब भगत हर के जोगण अम्बरीक जयदेव त्रिलोचन नामा अवर कबीर भणंग तिन को अवतार पयो कल भिंतर जस जगत्र परछायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो मनशा कर सिमरंद तुझै नर काम क्रोध मिट्यो जो तिण बाचा कर सिमरंत तुझै तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण कर्म कर तो दर्श परस पारस सर बल भट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो जिहि सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खिना जिहि सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिना जिहि सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै जिहि सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नवनद पावै सोई रामदास गुर बल पाणा मिल संगत तन तन करो जे सतगुर लग प्रभ पाई है सो सतगुर सिमरो नरो

अमृत शाट बिखे बिख खाई, माया मोह परम पै पूले, सुत धारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, ते मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। मोह मल विवश कियो, काम गै केस पछाड़ियो, क्रोध खंड प्रचंड लोभ अपमान स्यों झाड़ियो। जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सो मन्नै, भव सागर बंध्यो सिख तारे सो प्रसन्न। सिर तपत सचो तखत, जोग भोग संजुत बाल, गुर रामदास सच सल भाण, तू अटल राज अभग दाल। तू सतगुर चौं जुगी आप आपे परमेश्वर, सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरहं तौर। आद जुगाद अनाद कला तारी त्रियलुआ, अगम निगम उधरण जरा जमिया रूहां। गुर अमरदास थिर थप्यो,

जय जयकार जस जग अंदर मंदर पग जुगत शिव रहता। गुरपुरा पायो बड़ भागी लिव लागी मेदन पर सहता। पापै पै पंजन पर पीर निवारण कल सहार तोहे जस बकता। कुल सोडी गुरु रामदास तन धर्म तुजा अर्जन हर।

गुर अर्जन पुरख परमान पार्थो चाले नहीं निजा नाम निशान सतगुर शब्द सवारियो पवजल सायर सेत नाम हरि का बोहिता तो सतगुर संहेत नाम लाग जग उदरियो जगत उदाहरण नाम सतगुर तुठ पायो अब नाहे अवर सर काम बारंतर पूरी पड़ी ज्योत रूप हरे आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद पयो तत स्यो तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमृत शतर गुर राम दियो गुरु रामदास दर्शन परस कै मथुरा अमृत बैण मूर्त पंच परमान पुरख गुर अर्जन पिखो नैण सत रूप सत नाम सत संतोख धरयो उर आदि पुरख प्रतख लिख्यो अक्षर मस्तक धोर प्रगट ज्योत जग मगै प्रगट ज्योत

संगत श्रेष्ठ निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुर जोत अर्जन माहे तरी जग और न जाहे महातम मैं अवतार उजागर आन कियो तिन के दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो ए पद्धत ते मत चूकै रे मना भेद विभेद न जान बियो

जब लौ नहीं भाग लीलार उदय तब लौ प्रमति फिरते बहुतायो। कल खोर समुद्र में बूढ़त थे कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो। तत विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो। जपयो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन घर बनायो। काल समुद्र पय रूप प्रगट हर नाम उदाहरण बस संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारण। निर्मल पेक अपार तास बिन अवर न कोई मन बच जिन जानयो पयो ते सम सर सोई। तरण गगन नव खंड में जोत स्वरूपी रहयो पार पन मथुरा कश भेद नहीं गुर अर्जन परतक हर। अजय गंग जाल अटल सिख संगत सब नावै नित पुराण बाचिया वेद ब्रह्मा मुख गावै। अजय चवर सिर टुलै नाम अमृत मुख लियो गुर अर्जन सिर शतर आप परमेश्वर दियो। मिल नानक अंगद अमर गुरु गुरु रामदास हर पै गयो हर बंस।

रूप। एक कह जानन कहया बुझण ते नर सुगड़ स्वरूप। एक ना नाद न भेद न गीय रस रस कस न जानंत। एक ना सिद्ध न बुद्ध न अकल सार अखर का प्यो न लहंत। नानक ते नार असल खार जे बिन गुण गर्ब करंत। सो ब्राह्मण जो बिंदै ब्रह्म जप तप संजम कमावै कर्म। सील संतोख रखै धर्म बंधन तोड़ै होवै मुक्त। सोई ब्राह्मण पूजन जगत खत्री। सो जो कर्मा का सूर पुन दान का करै शरीर। खेत पछाणै बीजै दान सो खत्री दरगाह परवान।

गुरमुख बुढ़े कदे नाही जिना अंतर सुरत ज्ञान सदा सदा हर गुण रवे अंतर सहज त्यान ओए सदा आनंद भवे करह दुख सुख एक समान तिना नदरी को आया सब आत्म राम पशान मनमुख बाल के बिरद समान है जिना सु अंतर हर सुरत नाही बिच हो में कर्म कमाव दे सब धर्म रहे के जाही गुरमुख गुरमुख अच्छे निर्मले गुर के शब्द सुभाए उना मैल पतंग न लग गई जे चलन सतगुर पाए मनमुख झूठ न उतर जे सौ तो बन पाए नानक गुरमुख मेलियन गुर के अंक समाए बुरा करे सो के हास जय अपने रोह पे ही दजै मनमुख कमला रगड़ा लुजै गुरमुख होए थे सब कुछ सुजै नानक गुरमुख मन सो लुजै जिना सतगुर पुरख न सेवियो शब्द न की तो विचार ओए महान सुजून न आखियन पशु टोर गवार उना अंतर ज्ञान न ध्यान है हर सौ प्रीत न प्यार मनमुख मुए विकार में मर जम में वारो वार जीव ध्यानो मिले सो जीव दे हर जग जीवन और तार नानक गुरमुख सोने तित सच्चे दरबार हर मंदर हर साजिया हर बस जिस नाल गुरमती हर पाया माया मोह पर जाल हर मंदर वस्त अनेक है नवन दनाम समाल धन भगवंती नानका जिना गुरमुख लद्दा हर पाल वडभागी गाढ़ मंदर खोजिया हर हृदय पाया नाल मनमुख दह दस फिर रहे अत तिसना लोभ विकार माया मोह ना चुकई मर जम मह बारो वार सतगुर सेव सुख पाया अत तिसना ताज विकार जन मरण का दुख गया जन नानक शब्द विचार हर हर नाम त्याय मन

पाई जे बड़ सच्चा नाम सदा सच्चे के गुण गावा पाई सदा सच्चे के संग रहाओ पहनन गुण चंगियाया पाई अपनी पत के साध आपे खाए तिसका क्या सलाही है पाई दर्शन को बल जाए सतगुर विच वड़िया वड़ियाया पाई कर्म मिले ता पाए एक हुक्म मन ना जाननी भाई दूजे पाए फिराए संगत ढोई ना मिले पाई बैसन मिले ना थाओ नानक हुक्म तना मनाई सी भाई जिना तुरे कमाया नाओ तेन बेटो बारे पाई तेन को सद बलहारे जाओ से दाड़िया सचिया जे गुर चरनी लागन आनदन सेवने गुर अपना आनदन आनदर हन नानक से मोह सोने सच्चे दर दिसन मुख सच्चे सच दाड़िया सच बोल सच कमाहे सच्चा शब्द मन बसिया सतगुर माहे समाहे सच्ची राशी सच तन उत्तम पदवी पाहे सच सुने सच

नानक बैन सतगुर सच ना पाई है मन मुख भूल जाहे बाविया प्रयो प्रयो करे जल नद प्रेम प्यार गोर मिले शीतल जल पाया सब दुख निवारण हार तस चूके सहज उपजय चूके कूक पुकार नानक गुरमुख शांत होए हर नाम रखो और धार बाविया तू सच जो सच्चे सोल मिलाए बोलिया तेरा थाए पवे गुरमुख होए अलाए शब्द चीन देखी उतरे मन लै रजाए चारे कुंडा चोक वरसदा बूंद पवे सहज सुभाए जल ही ते सब उपजाए बिन जल प्यास न जाए नानक हर जल जन पिया तस भूख न लागे आए बाविया तू सहज बोल सच्चे शब्द सुपाए सब कुछ तेरे नाल है सतगुरु दिया दिखाए आप शाने प्रीतम मिले बूठा शैबर लाए चिम चम अमृत वरसदा तिसना भुख सब जाए कूक पुकार न हो बई ज्योति ज्योत मिलाए नानक सुख सबन सुहागणी

तुमो पाए आन तान बहुता उपजय धरती शोभा पाए अन धन लोक भगत करे गुर के शब्द समाए आपे सच्चा बख्श ले कर कृपा करे जाए हर गुण गावो का मणि सच्चे शब्द सुमाए पैका से सिंगार करो सच रहो लिबलाए नानक नामो मन बसे हर दर गाल छाए बावी हा सगली धरती जे फिर उड़ चढ़े आकाश सतगुर मिलया जल पाई चूके भूख प्यास जियो पिंड सब तिसका सब किश तिसके पास वैण बोलिया सब किश जानदा किस आगे की चे अरदास नानक कट कट को वर्तदा शब्द करे परगास नानक तिसे बसंत है जय सतगुर सेव समाए हर बूठा मन तन सब पर फड़े सब जग हरिया बल होए सब देश दा बसंत है जित तन मन हरिया होए नानक नाम ना बिसरे जिन सरिया सब कोए नानक तना बसंत है।

तू तू करै बोले पली बाण साहेब सदा हदूर है क्या उच्ची करे पुकार जन जग तो पाए हर रंग किया तिसे बिटो कुर्बान आप छोड़ ता सो मिले सच्चा हो विचार होमे फिक्का बोलना भोजन सत्का कार वाण तरण त्रिपण तुझे त्याएगा आंदन सत्

यना सामितो ल तन जड़ाए आपने लहसो सजन टोल सजन सचा पातशाह सिर शाम दशा जैस पास बैठिया सोही है सबना दा विसार सजन सचा पातशाह सिर शाम दशा

कहो नानक पाज हर मना पर न जम की भास तरना पोयोही गयो लियो जरा तन जीत।

नहीं काल पहुँचो आन को नानक नर बावरे क्यों न पजय भगवान। तन दारा संपत सगल जिने अपनी कर मान इन मैं का संगी नहीं नानक साची जान। पद ते उदारन पै हरन हर अनाथ के नाथ कहो नानक ते जानी है सदा बस्त सुम साथ। तन तन जे तो को दियो ता स्यो न कीन कहो नानक नर बाबरे

काड गाड में हर जो बस संतन के हो पुकार को नानक ते पाज माना पौने दे उतरे पार सुख दुख जे परस नहीं लोभ मोह अपमान को नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान उस्तत निंदया नाही जय कंचन लो समान को नानक सुन रे मना मुगत ताहे तै जान पै काहू को देत न पै मान त्यान को नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान जे बिखे आ सगली तजी लियो पेख बैराग

सशनम अमित जय प्राणी हर जस कहो नानक ते जग जीत जे काट सिमरन राम को सो नर मुगता जान ते नर हर अंतर नहीं

जगत में केन जपयो गुर मंत्र राम नाम और मैं गयो जाके सम नहीं कोए जैसे मरत संकट मिटाए।

दियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे दो घर होग संताप उतरे

दान केश दान रह दान बभेग दान वसा दान परोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी के इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार खालसे जी के बोल बाले खालसा जी साहिब बोलो जी वाहे गुरु सिखां दा मन नीवा मात उचे मादे राखे आप अकाल पुरख अंदर जामे गुरु गरीब निवास जी पातशाह पांदे सदा सहाय दतार पिता जी आओ श्री ननकाणा साहब होर गुरुद्वारे गुरधाम जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया सेवा संभाल अपने खालसा जी नूं बख्शो जी निमाणियां दे माण नेताणियां दे ताण नेओटियां दे ओट ने आसरियां दे आसरा धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह जी आओ आप दे पावन पवित्र चरणां विच

पुरजा पुरजा कट मरे कबो न छाडे खेत दाता जी। 1984 दे कल्लू घारे नूं समर्पण हुंदिया होया समूह शहीदां दी याद अते पंथ दी चढ़दी कला लई अमृत वेले तो आप दे हजूर हफ्तावारी दीवान सजे सजे दीवाना विच आपने कृपा कीती आप दे दरों करों वरसाए हो गुरमुख प्यारे गुरु घर गुरु घर दे प्रेमी दोस्त मित्र सेवक परिवारां वल्लों अते इसे तरह दाता जी नगर कुराली जलंधर दियां समूह संगतां नगर निवासी परिवारां वल्लों बख्शियां दाता दा शुकराना करदे होए परिवारां दी सुख शांति तंदुरुस्ती चढ़दी कला कारोबारां दियां बरकतां गुरसिखी जीवन नाम दी दात दी जाचना करदिआं होइआं गुरु ग्रंथ गुरु पंथ नूं समर्पण हुंदिआं सरबत दे भले लई पंथ दी चढ़दी कला लई ते 1984 दे कल्लू घारे नूं समर्पण हुंदिआं समूह शहीदां दी याद अते नगर कुराली ते समूह मित्रां दोस्तां दी चढ़दी कला लई शुकराने वजों आप दे चरणां विच अरदास बेनती करदिआं होइआं समूह परिवारां वल्लों आप दी अलाही बाणी दे श्री अखंड पाठ आरंभ कीते गए आप जी दा कोटान कोट शुकर है ऐस संपूर्ण होए तथा भोग पै ने पाठी सिखां कोलों पाठ करदे आ आप दे सेवक परिवारां कोलों सेवा करदे आ हुईआं फुल्लां बख्श लैणियां कीती सेवा अपने दर ते प्रवान करनी पढ़ी सुनी बाणी दा भाव समूह परिवारां दे हिरदिआं विच वसाउणा मेहर करनी दाता जी आओ सरबत परिवारां दे सिर ते मेहर भरिआ तकड़ां परिवारां विच सुख वरतौणा बच्चिआं दे सिर ते मेहर भरिआ तकड़ां तंदुरुस्तियां चढ़दियां गला गुरसिखी जीवन बख्शिश करना प्रेम प्यार इतफाक दियां दातां गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ दी चढ़दी कला लई इसे तरह सेवा करन दा उदम बल बख्शिश करदे रहना नगर दे सिर ते मेहर भरिआ तकड़ां नगर दे समूह परिवारां धीआं भैणां दे सिर ते मेहर भरिआ तक के चढ़दी कला बख्शिश करनी सेवा थाए पौनी 1984 दे समूह शहीदां दी याद सरबत परिवारां ते संगतां दे हिरदिआं विच वसाउणी पंथ दे सिर ते मेहर भरिआ तकड़ां पंथ नूं चढ़दियां कला बख्शिश करनी आ आउण वाले समय धर कर बख्श के निहाल करना दाता जी सरबत परिवारां वल्लों आप जी सुंदर माले बेअंत माया अते आप संगतां दी सेवा कीर्तन अते गुरु लंगर द्वारा कीती जा रही आ मेहर करनी दाता जी आओ इसे तरह सेवा करन दा उदम बल बख्शिश करदे रहना अंग संग सहाई हो के वर्तना हो जो माई भाई गुरम प्यारे आप दे चरणां च तिल फुल भेटावां रस्ता आदिक देगां वास्ते माया लै के हाजिर होए सब दी हाजरी दर प्रवान करनी सिर ते मेहर भरिआ तकड़ां परिवारां विच सुख वरतौणा दरों घरों सिखी सिद्ध भरोसा नामदान बख्श के निहाल करना मेहर करनी इस स्थान नूं चढ़दियां कला बख्शिश करनियां समूह सेवादारां अते संगतां नूं इस स्थान दी सेवा करन दा उदम बल बख्शिश करदे रहना सरबत दे भले लई सरबत परिवारां दी चढ़दी कला लई आप दे हजूर हफ्तावारी दीवान सजरे ने मेहर भरिआ हथ रखना पवित्र हजूरी विच समूह परिवारां वल्लों

गुरु रामदास राखो शरणाई वाहिगुरु जी गौड़ी घर बारवा मन रे छाडो भरम प्रगट हुए नाचो या माया के डांडे सूर के सन्मुख रन ते डर पै सती के सांचे भांडे डगमग छाड़ रे मन बौरा अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए लीनो हाथ संधो